समझ में ना आता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे मर के दिखा।

0: celebrating 36 years of excellence.
1: Sunrise Radio, simply born to rise.
0: This is Sunrise with the latest news headlines. Next.
2: Sunrise Radio. The Sunrise Breakfast Show, brought to you by Wellman and Wellwoman Supplements, for men and for women, for whatever life throws at you. From Vitabiotics, the UK's number one vitamin company, available from pharmacies, supermarkets and Vitabiotics.com. For number one verification, see Vitabiotics.com.
3: जब कोई अपना दुनिया से विदा होता है तो दर्द बहुत ज्यादा होता है। ऊपर से आखिरी रस्मों की जिम्मेदारियाँ, पूरी धार्मिक रीति और भरपूर हमदर्दी के साथ फ्यूनरल कराते हैं एशियन फ्यूनरल केयर। सर्विस हॉल या इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन, स्नान या दूसरी सहूलियत, दुख की ऐसी घड़ी में कॉन्टैक्ट संजय लोधिया एट एशियन फ्यूनरल केयर, 35 कैंटन पार्क परेड, कैंटन रोड, और 66 मोनार्क परेड, लंदन रोड, मिचम। फोन 0208-909-3030 और विजिट एशियन फ्यूनरल केयर .com.
2: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
4: Looking to get back into study? Choose Global

0: झुमका
1: लिसनर्स चॉइस ब्रॉट टू यू बाय कलर्स टीवी
2: सहर बेग डेयर्स टू ड्रीम बियॉन्ड लिमिट्स बट डेस्टिनी टाइज हर टू माहिद नियाजी अ मैन शी नेवर चोज इन अ वर्ल्ड ऑफ रूल्स कंट्रोल एंड जजमेंट विल हर ड्रीम सर्वाइव वॉच सहर होने को है मंडे टू फ्राइडे 9:25 PM ओनली ऑन कलर्स टीवी
3: वेल आई गॉट टू टेक माय हैट्स ऑफ टू यू गाइस हैव रियली ट्राइड फॉर दैट सेकंड वन बट नो वन्स गॉट द सेकंड वन राइट येट quite a few people got the first and the third one right. Well, I can tell you it's not Rangila. I can tell you it's not Raiz either. Yeah, Rangila seems to be the consensus, which is not right. Let's have another listen.

0: Nangorie. That is song number two. Let me know your thoughts. 07925-700-272. That is the WhatsApp number. The greatest Asian radio station in the
1: world. Sunrise Radio. Kavita on Sunrise with Maharani on Sony TV. The gripping political Sony Live series that had millions hooked is finally on Sony TV. Starring Huma Qureshi in most powerful role yet. Watch Maharani tonight 9 p.m. on Sony TV.
2: Travel invites you to Dubai, where world-class hospitality, stunning resorts and iconic attractions await. From beaches to desert adventures, there's something for everyone, all at unbeatable prices. Call 0208 574 8410. South All Travel, at all protected. South All Travel
3: can take you there. Lotto from the National Lottery now gives you two chances to win with every ticket. So it could be you, and it could be you. You, and then the same you, again, you. One ticket, two chances to win. New Lotto. It could be you, and it could be you. See website for Lotto changes. Rules apply. Players must be 18 or over.
4: जदों भी कॉमेडी मूवी दी गल हुंदी है तां एक मूवी दा नाम हमेशा आंदा है। ओ मूवी जिने सब नू हसा हसा के लोटपोट कीता।
5: की कह रहे हो?
4: ओ मूवी जिदी स्टोरी ने ब्रेन रॉट कीता।
5: की कह रहे हो?
6: गिप्पी ग्रेवाल, बिन्नू टिल्लो, सरगुन मेहता फिर तो लेके आ रहे ने पंजाबी सिनेमा दी सब तो वड्डी फ्रेंचाइज कैरी ऑन जट्टा 4 जिथे एडवोकेट टिल्लो फिर कहेंगे
5: पर टेलो ने काला कोट ऐवे नहीं पाया।
4: दिस 26 जून कैरी ऑन जट्टा 4 दे नाल थिएटर्स होंगे लाफ्टर दा स्टेडियम, क्योंकि ये सिर्फ फिल्म नहीं, ये लाफ्टर दा फेस्टिवल है।